0: itchy. It's hot.
1: Do tole ki mundri la de, kin tole

ऑनलाइन लव टेस्ट छोड़ो, द रियल लव टेस्ट इज राइट हियर। आई हैव फिगर इट ऑल आउट। अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है और आपका बॉयफ्रेंड आपके सामने बैठकर गैंग्स ऑफ वसेपुर पार्ट 1, गैंग्स ऑफ वसेपुर पार्ट 2, बदलापुर, मॉनसून शूट आउट, न्यूटन, ऐसी फिल्मों के बारे में बात किए जा रहा है और फिर भी आपका मन नहीं कर रहा कि आप उसकी नस ढूंढे, उसे प्यार से डायगनली काटे और जोर जोर से हंसे, then that means you're in love. It is true. क्योंकि जब मुझे भूख लगी होती है ना, I get all forms of hangry. और मेरे hangry mood में मैं किसी से इतनी मोहब्बत नहीं करती कि मैं उसकी बकवास tolerate कर सकूँ. अगर आप hangry इंसान हो और फिर भी बकवास tolerate कर रहे हो, यही तो है प्यार की निशानी. और अगर हो गया है प्यार, तो डोंट यू थिंक मेरे यार, हमें इसके बारे में कॉन्वो करनी चाहिए. एंड टू डू दैट, आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर, लेट्स गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. एंड व्हाइल यू फाइंड मी ऑन योर सोशल्स, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Radio Mirchi.
1: Radio Mirchi, it's hot.
2: Mirchi, it's hot.

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: यार बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन दी बात होर सी।
1: यार 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: कुछ साल पहले तक बॉलीवुड को लगता था कि ऑडियंस को क्या चाहिए वो उसे पता है। फिर ऑडियंस ने एक दिन सीधा कह दिया, नहीं यार, अब तुम नहीं, हम डिसाइड करेंगे। और तब से कुछ बदला है। धमाल 4, कॉकटेल 2, वेलकम टू द जंगल जैसी फिल्में अपनी फैमिलियर दुनिया के साथ अब भी चल रही हैं, लेकिन साथ में यू गॉट फिल्म्स लाइक टॉक्सिक, आवारापन, हैवान, धुरंधर भी। ऐसी फिल्में, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिन्हें शायद 5-10 साल पहले कोई फिल्म मेकर पिच करने से पहले दो बार सोचता। और बात ये नहीं है कि लोगों ने कमर्शियल सिनेमा को रिजेक्ट कर दिया, बात सिर्फ इतनी है अब ऑर्डिनरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझकर एक्सेप्ट करने का जमाना गया। आज फिल्म मेकर रिस्क लेता है तो जनता उस रिस्क को नोटिस करती है, कभी गले लगाती है, कभी सीधा रिजेक्ट कर देती है। और शायद इसलिए धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं लगती। जैसे दिल चाहता है ने एक वक्त पर हिंदी सिनेमा का एक नया पन्ना खोला था, शायद धुरंधर भी एक पेज टर्नर है। और आज का पहला पन्ना खुलता है नंबर 20 पर, जाइए सजना बाय जैस्मिन सैनलास फ्रॉम टू रन धर
3: नंबर 20।

0: यार सीक्वल बनाना वैसे भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन धुरंधर गॉट इट राइट एंड समहाउ इवन धमाल 4 गॉट इट राइट। उसका गाना चटनी इज ऑन नंबर 19 दिस वीक, लेकिन चटनी के ठीक ऊपर है इस हफ्ते का गाना नंबर 18, विच इज हुमा कुरैशी की फिल्म बेबी डू डाई डू का गाना इश्क कमीना, ओरिजिनली पिक्चराइज्ड ऑन शाहरुख खान एंड ऐश्वर्या राय। सो आई डोंट नो कि इस गाने की पॉपुलैरिटी का क्रेडिट कितना इन दोनों को जाता है, मोर देन दिस फिल्म बेबी डू डाई डू। लेकिन नंबर 17 पर जो आ रहा है उसमें एक अलग ही वॉर्म्थ है, शान, बस शान की आवाज।
1: जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं जो कभी मिली मुझे है नहीं, मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन वो लड़की है कहाँ।
0: कुछ आवाजें गाना नहीं गाती, सीधा स्क्रीन पर एक्टर को खड़ा कर देती हैं।
1: सोचती है ज्यादा कम वो समझती है, दिल कुछ कहता है कुछ और ही करती है। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती।
0: सैफ अली खान
1: पर गुस्से में जब आए और आंखें वो दिखलाए, लड़ते लड़ते गलती से मुस्काए।
0: सैफ अली खान तुम्हें

0: उड़ता हूँ।
1: फिर से सैफ अली खान, म्यूजिक हटा दीजिए, अरेंजमेंट को भी हटा दीजिए, सिर्फ शान की आवाज, फिर भी सामने वही सैफ अली खान। दिल चाहता है हम तुम सलाम नमस्ते तारा रम पम। शान और सैफ एक ऐसी जोड़ी जो बॉलीवुड को थोड़ा हल्का, थोड़ा मासूम, थोड़ा खूबसूरत बना देती थी, और अब लगभग 20 साल बाद दोनों फिर साथ आए हैं। बस इस बार सैफ हीरो नहीं, पापा हैं, और शान की आवाज भी कुछ वैसी ही है, सिर्फ कहानी बड़ी हो गई है। नंबर 17 पर डेब्यू इन दिस वीक ऑन द मिर्ची टॉप 20, ये है मेरे हीरो है वो, हैवान से प्रीतम दा का म्यूजिक।
2: नंबर 17।
3: लेके जन्म पहला पहला कदम, जब चलते हैं हम उंगली थामे कोई,
4: लिख रहे हो ना,
3: तुम भी गाओ।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi. It's hot. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 13.

हमारी आरी सालों से एग्जिस्ट करता था, लेकिन धुरंधर ने उसके अंदर एक नया मीनिंग भर दिया। अब जब भी ये बीट बजती है तो दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, रणवीर सिंह की, बदले की आग में पूरी तरह गोइंग बिजर्क। नंबर 13 पर इट्स आरी आरी फ्रॉम धुरंधर द रिवेंज। और शायद सिनेमा में गाने की असली पावर यही है यार, कभी फिल्म किसी गाने को अपना बना लेती है और कभी कोई गाना फिल्म से बाहर निकलकर अपनी दुनिया बना लेता है। अनिरुद्ध रविचंद्र का बनाया एक ट्रैक द राग ऑफ रिवेंज इसका परफेक्ट एग्जांपल है। ये फिल्म के लिए बना ही नहीं था, कैन फिल्म फेस्टिवल के लिए एक फिल्म डीसी नाम की भेजी जा रही थी और उसके लिए ये ट्रैक एक लास्ट मिनट एडिशन था, लेकिन फिर इंटरनेट ने इसे पकड़ लिया

0: gym edits, anime fights, gangster montages, transformation videos, vocal challenges. 48 घंटे में ये गाना हो गया totally viral. और सबसे क्रेजी बात पता क्या है? इस गाने को किसी फिल्म की वैसे जरूरत ही नहीं पड़ी. कभी कभी एक थीम सिर्फ फिल्म का साउंड ट्रैक नहीं होती, वो फिल्म का एटीट्यूड बन जाती है. लेकिन अब इसी एटीट्यूड से बिल्कुल एक अलग फ्लेवर की तरफ जाने वाला हूं मैं, बिकॉज नंबर 12 पर है द मेडिटेरेनियन फील ऑफ माशुका फ्रॉम कॉकटेल 2.
1: नंबर 12.

Energy. It's hot. Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot. Number 7.

तबाही नाम ही काफी है, लेकिन कितनी टॉक्सिसिटी फैलेगी सिनेमा स्क्रीन्स पर, वेल आई डोंट नो। लेकिन इसी मैडनेस के बीच एक गाना और है जो सुनने में वैसे लव सॉन्ग लगता है, जैसे एक लड़का अपनी महबूबा के लिए ये गाना गा रहा हो, लेकिन शायद ये गाना वैसा है नहीं। तेरा मेरा रिश्ता 2007 में इमरान हाशमी एक ऐसे इंसान की तरह गा रहे थे जो किसी इंसान से नहीं अपने खुदा से सवाल कर रहे थे, और अब 19 साल बाद आवारापन 2 में वही रिश्ता वापस आया है। बस एक चीज बदल गई है, पहले इंसान खुदा को बुला रहा था, इस बार खुदा इंसान से बात कर रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ये कोइंसिडेंस है। मिथुन के म्यूजिक में खुदा अक्सर एक किरदार की तरह आते हैं, कभी दूर, कभी खामोश, और कभी एक टूटे हुए इंसान के बिल्कुल सामने। मर्डर 2 का ए खुदा याद कीजिए।

0: वही डेस्पिरेशन, वही सवाल, वही यकीन और शक के बीच का वो एक पल। शायद इसलिए तेरा मेरा रिश्ता को 2007 में सुनना और आज 2026 में सुनना दो अलग अलग अनुभव हैं, टू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। कभी कभी एक गाना दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं होता, इंसान और उसके खुदा के बीच की बात होती है। और 19 साल बाद शायद उस बात का जवाब भी आ गया है। तेरा मेरा रिश्ता, आवारापन टू,
1: नंबर 6।

कभी कभी किसी आवाज की कीमत तब समझ आती है जब हमें पता चल जाता है कि शायद अब वो आवाज रोज नहीं सुनाई देगी। ये आवारापन इज ऑन नंबर टू, लास्ट वीक इट वॉज ऑन नंबर वन, लेकिन आवाज वही है अरिजीत की। और अजीब बात यह है, अरिजीत अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर चुका है, लेकिन जाते जाते भी ऐसे गाने दे रहा है जो हमें उसे जाने नहीं देना चाहता। और शायद इसलिए उसका गाया हुआ एक गाना थोड़ा ज्यादा महसूस होता है, खासकर उसकी कही हुई, सॉरी गाई हुई एक लाइन।

15 साल पहले जब अरिजीत ने ये लाइनें गाई थी तब ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत खूबसूरत स्टैंजा है, लेकिन आज सुनता हूं तो लगता है जैसे किसी ने हमें पहले ही अंदेशा दे दिया था कि एक दिन ये लम्हे गुजर जाएंगे। यार इस बीते हुए 1.5 दशक में हमारे बीच कितनी आवाजें आई हैं, लेकिन मेरी जनरेशन की खुशियां, उनकी तन्हाइयां और उनके हार्ट ब्रेक्स, अरिजीत की आवाज ने इन सबका सिर्फ साथ नहीं दिया, इन्हें डिफाइन किया है। और अब जब एक दौर धीरे धीरे खत्म होने की दहलीज पर पहुंच रहा है, शायद सबसे खूबसूरत बात यह है कि अरिजीत की कमी महसूस होने से पहले ही उनकी याद हमारे पास आ चुकी है। और आज उस याद का एक और पन्ना मैं आपको सुना रहा हूं, बिकॉज दिस सॉन्ग हैज वंस अगेन क्लाइम्ड टू नंबर 1। अरिजीत विद अनदर मेमोरी, दिस इज गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर। नंबर 1।

0: और एक बार फिर गहरा हुआ ने सबसे ऊपर चोटी पर अपनी जगह बना ली है। अरिजीत सिंह की आवाज, धुरंधर का जुनून और मिर्ची टॉप 20 का एक और एपिसोड। बस आज के लिए इतना ही, मिलूंगा आपसे अगली बार, तब तक सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. 98.3 Mirchi, it's hot.

Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची पर अब बारी है असली पॉप काउंटडाउन की। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए करते हैं। उसके साथ साथ हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक, सम स्पेशल शाउट आउट्स एंड आज काफी सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर। कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी है, बिंदास आके हिट मी अप। शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। इस काउंटडाउन की शुरुआत ही आज एक नई एंट्री के साथ हो रही है। गाना नंबर 10 पर डेब्यू करता है बंजारे का गाना बरसात। इट इज सो इंटरेस्टिंग कि आज से एक साल पहले हम बंजारे द आर्टिस्ट की एग्जिस्टेंस के बारे में भी नहीं जानते थे और आज उनके दो गाने हैं इस काउंटडाउन पे। एक ने डेब्यू किया नंबर 10 और एक है ऑन द टॉप। इस सुपर इनक्रेडिबल हरियाणवी डुओ इज वन टू लुक फॉर। रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। बरसात इज डेब्यूइंग दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद संजू राठौड़ का बैंग गर्ल्स पिछले हफ्ते से दो पोजिशन नीचे ड्रॉप होके ऑन गाना नंबर 2। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
0: Number 10.

0: द मैन द मिथ द लेजेंड संजू राठौड़ की आवाज दैट वाज बैंगल्स पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 9
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरे साथ कनेक्ट करो, कोई गाना शेयर करना हो बिंदास आके हिट मी अप. कौन सा गाना किसको अच्छा लगता है, कोई एक गाने से कितना डीप लेवल पे कनेक्ट करता है, दैट्स वेरी सब्जेक्टिव. I truly believe that हमें कोई गाना हमारे खुद के experiences की वजह से अच्छा लगता है, हमारा emotional response to it, जो बहुत बार हम जिस situations में होते हैं, जिस environment में होते हैं, जिस दौर में होते हैं अपनी जिंदगी के, उससे connected होता है. But ऐसे गाने होते हैं जो timeless होते हैं, उन्हें हम classics कहते हैं. Countdown पर आगे बढ़ते हुए हम अपना 90s and 2000s का indie pop classic आपके लिए play करने वाले हैं. But one thing I've observed through the weeks is जब भी हम कोई गाना play करते हैं, उसकी intro music पर ही लोग उस गाने को पहचान जाते हैं. That makes us realize the power of a good intro music. जैसे this one by Lucky Ali. आई नो आप साथ में गुनगुनाने लग गए थे. ये मेलेडी, ये इंट्रो म्यूजिक हमारी मेमोरीज में एच्ड है, जस्ट लाइक मोहित चौहान का डूबा डूबा. ये म्यूजिक आपको पहाड़ों पे ट्रांसपोर्ट कर देता है. मोहित चौहान का गाना डूबा डूबा पूरा याद आ जाता है. सच पावरफुल आइकॉनिक इंट्रो पीसेस. एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, मैं आपके लिए इंट्रो म्यूजिक प्ले कर रही हूँ, आपको बताना है कौन से वाला गाना है. इट्स अ हाई बीट वन. एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर मुझे आके बताओ ये कौन सा गाना है. शो में आगे बढ़ते हुए वी विल प्ले वन ऑफ दीज सॉन्ग्स ऑन आवर कैसेट क्लासिक्स, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. मूविंग ऑन विद द काउंटडाउन, अगले वाला गाना ज़ारा खान स्केल्स का मूव बॉडी. 6 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार मूव बॉडी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 8.
1: Number 8.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट
0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
2: नंबर 7 7 7

0: गर्व विद प्रियांश की कॉम्पोजिशन, प्रियांश जोनीता गांधी की आवाज में दिस अटली बटरफुली ब्यूटीफुल सॉन्ग कॉल्ड काफी है ना इज फ्रॉम मुसाफिर कैफे। इवन इफ आपने अभी तक शो नहीं देखा है, दिस सॉन्ग इज फॉर एवरीवन एंड टोटली बिलोंग्स ऑन द काउंटडाउन दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This show is all about the hottest pop music of the week. Hafte ke top 10 pop gaane, jisme ek nayi entry hai. But it's time for what we call
1: Kanika's Cassette Classic.
0: हमारी कैसेट क्लासिक, जहां पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं। ये वो गाने हैं जिनसे हमें इंडी पॉप से मोहब्बत हुई है, जिनकी वजह से ये पैरेलल लेन ऑफ म्यूजिक आज यहां तक आ गया है और हम 7 साल से ये शो कर रहे हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वाज
2: तेरी दीवानी,
0: द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है बिजुरिया बाय द वन एंड ओनली सोनू निगम। ये गाना सुन के ना बॉडी में एक इलेक्ट्रिसिटी सी आ जाती है। मेरी तबीयत थोड़ी सी फीकी पड़ रही थी इस हफ्ते, मौसम में ही कुछ चल रहा है, सो दिस वाज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ सॉन्ग जो मुझे सुनना था टू री एनर्जाइज माई सेल्फ। सोनू निगम की एल्बम मौसम से ये गाना फ्रॉम द लेट 90s। दिस सॉन्ग रिमाइंड्स अस ऑफ द वर्सेटैलिटी ऑफ सोनू निगम। एक तरफ दीवाना एल्बम में इतने पावरफुल लव बैलेड्स, दूसरी तरफ अ सॉन्ग लाइक बिजुरिया, फुल पॉप स्टार एनर्जी ठुमका वो अंदाज, गाना सुनते ही पूरा माहौल बन जाता है। इट्स इनक्रेडिबल कि आज 26 साल के बाद भी जब भी सोनू निगम कोई लाइव परफॉर्मेंस करते हैं, क्राउड सिर्फ बिजुरिया के लिए वेट करती रहती है। एंड ये खुद सोनू निगम का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स है टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड, बिकॉज ऑडियंस तो हम ही है, कनेक्शन तो फील होता है। बट आई बेट यू डिडंट नो दिस दैट 26 साल के बाद सोनू निगम ने इस गाने की जो ओरिजिनल फीचरिंग एक्टर हैं इशिता अरुण, उनके साथ फिर से इस गाने का वीडियो बनाया। हाउ डू यू फील अबाउट दैट वीडियो, जाके देख के मुझे बताना एट आरजे कनिका पर। अब अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, कौन कह सकता है इस गाने को 26 साल हो गए, द चार्म इज स्टिल द सेम। सोनू निगम की आवाज में दिस इज बिजुरिया ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय

0: डूड, ये गाना सुन के ही मैं बिजुरिया बिजुरिया का स्टेप करने लग गई थी स्टूडियो में. आप देख नहीं पा रहे हैं लेकिन अपनी इमेजिनेशन से इमेजिन कर लो. दैट वाज सोनू निगम की आवाज में बिजुरिया ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे कनिका पर आओ, कोई भी गाना रेकमेंड करना हो, सजेस्ट करना हो फ्रॉम द 90s 2000s, दोज इंडी पॉप सॉन्ग्स जो आज भी सुन के आपको लगता है कि यार ये वाला गाना तो आज भी फेवरेट है, वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंट डाउन, अगले वाले गाने की बारी है. मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि कोई अपना फेवरेट ना बोलूं, बट जब गाना ऐसा होता है ना तो थोड़ा सा बोलने का मन कर जाता है. दैट आई थिंक दिस इज माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ द काउंटडाउन. चार हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. फरक दी आर्टिस्ट का, उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है तारे एंड दिस सॉन्ग हिट्स ऑल द फील्स ब्रो. सो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. दिस इज तारे दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

लफ्ज़ कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया

0: मिटर और की आवाज उन्हीं की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है शीशा। 22 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। सोशल मीडिया वंस इन अ वाइल हमें एक ऐसे ट्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ट्रेंड तो चला जाता है पर वो गाना याद रह जाता है। इट्स टाइम टू गिव अ शाउट आउट टू ऐसा ही एक सॉन्ग।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करो, बिल्कुल फ्री है। वैसे भी मुझे पता है आप सारा टाइम ही इंटरनेट पे स्पेंड करती हो, बिकॉज बाय नाउ यू हैव बीन फॉलोइंग ऑल द इंटरनेट मीम्स एंड डूइंग ऑल द इंटरनेट ट्रेंड्स। माय फेवरेट पार्ट अबाउट दिस इज कि जब कोई गाना एक ट्रेंड से इतना बड़ा हो जाता है कि हमारे शोज में डेब्यू कर जाता है, आपकी प्लेलिस्ट तक आ जाता है, और ऐसे ही एक गाने को हम आज शाउट आउट देने वाले हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट गुची। गाने का नाम है गुची बाय अरूप खान, एंड मे बी आप इस गाने को एक बहुत क्वर्की साइड वॉक से जानते हैं। बाय द वे, ये कोई नया गाना नहीं है, ये 2020 का है, 5 साल पुराना, बट एक इंटरनेट एडिट की वजह से हर जगह वायरल हो गया है। एक बहुत फेमस एक्टर पॉलिटिशियन एक कॉलेज इवेंट में स्टेज तक जा रहे थे, एंड उनके हिसाब से वहां थोड़ी जगह नहीं थी, तो उन्होंने एक क्वर्की सा साइड वॉक मारा, टेढ़ा मेढ़ा, बिल्कुल ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं था, एंड देन द इंटरनेट डिड इट्स मैजिक। उन्होंने उस वीडियो पे गुची का गाना चिपकाया और वो हर जगह वायरल हो गई। पूरा डांस स्टेप बन गया, लोग उसे गुची वॉक कह रहे हैं। आई नो राइट, मून वॉक सुना था, लेकिन 2026 ने हमें गुची वॉक दे दी। एंड द आर्टिस्ट अरूप खान इज हैविंग हर मोमेंट, जिन्होंने 5 साल पहले ये गाना बनाया था, एंड हैड नो आइडिया कि एक इंटरनेट ट्रेंड से हमें गाना इतना पसंद आ जाएगा। सो थैंक यू जेन ज़ी, अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। अरूप खान का गुची इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: How can you listen to this song and not start doing that step, man? Arup Khan ki awaaz mein, that was Gucci on our special shout out this week. And अगर आपको नहीं पता कि मैं कौन से स्टेप के बारे में बात कर रही हूँ तो आप कहाँ हैं, आपके चरण कहाँ हैं? Oh my God, इंटरनेट आप तक पहुँच नहीं पा रहा है, आपका पीस कितना प्रोटेक्टेड है. So mad respect to you. पर गाना बहुत अच्छा है, so you will keep coming back to it. Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी. हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स. गाने का नाम है साडी सुन, दिस वीक ऑन गाना नंबर 3.
1: नंबर 3.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
1: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 बद्दी का नाम है आरजे कनिका। ये वो शो है जहां हम हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन आपके लिए लेकर आते हैं, यानी कि वीकली पॉप रिपोर्ट कार्ड। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करो, कोई गाना सजेस्ट करना हो बिंदास आके हिट मी अप, फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। इट्स टाइम फॉर मी टू टेक यू टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, बट उससे पहले एक क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप। शुरुआत ही काउंटडाउन की एक नई एंट्री के साथ हुई, बंजारे का बरसात डेब्यूज ऑन गाना नंबर 10।
2: प्यारे सा मिलना नहीं, कौन मेरे जैसा जावेगी।
1: उसके बाद संजू राठौड़ का बैंगल्स ऑन गाना नंबर 9। ज़ारा खान एंड स्केल्स का मूव बॉडी स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग ऑन गाना नंबर 8। अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी ऑन गाना नंबर 7। जुनीता गांधी गर्वित प्रियांश का काफी है ना दिस वीक ऑन गाना नंबर 6।
3: तू मेरा हो गया इतना ही काफी है।
1: देन फरक का तारे ऑन गाना नंबर 5। मिट्टर और का शीशा स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग 22 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। हर्ष नुसी का साडी सुन दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। एंड द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, इस हफ्ते के टॉप 2 गानों में कुछ तो रीशफल हुआ है। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर

0: रेखा भारद्वाज राघव कौशिक की आवाज. द सॉन्ग इज फ्रॉम मुसाफिर कैफे. दरमिया इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2. उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द काउंटडाउन. 22 हफ्तों से बरकरार, पिछले 3 हफ्तों से ये गाना नंबर 1 की पोजीशन को रिटेन करके बैठा है. बंजारे का गाना, गाने का नाम है बैरन, स्टिल ऑन गाना नंबर 1. दोनों गाने दरमिया ऑन नंबर 2, बैरन ऑन नंबर 1, बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. पति का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: Number 2.

0: Mitchie, it's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

स्टेशन तेरे मेरे दो दिलों की मंजिल तो है लव स्टेशन। सबसे पहले आई हूँ करने दिल का रिजर्वेशन, तुझे चाहे ले ले मेरे दिल का एग्जामिनेशन।

0: बस तुम रहते हो।
1: जनक जनक जन टपक टपक टपक जनक खनक खन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन ध

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। और अगर तुम्हारा ब्रेन फिलहाल बफरिंग पर पहुंच चुका है, डोंट यू वरी, हम दोनों मिलकर उसे रीस्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि मेरा ब्रेन भी बफर करता है मॉर्निंग में। व्हेदर यू आर ड्राइविंग टू वर्क, ड्रॉपिंग द किड्स ऑफ टू स्कूल, प्रिटेंडिंग टू वर्क फ्रॉम होम, या फिर अपना टिफिन बॉक्स पैक कर रहे हो, या फिर अभी तक बेड से ही नहीं उठे हो, या अभी पूरा ब्रेकफास्ट वर्कआउट कर गुड बॉय या गुड गर्ल बनकर बैठे हुए हो, जो कुछ भी कर रहे हो ना, अगले कुछ घंटों तक मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। मैं बोलूँ तो प्रिसिला ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं, थोड़ी सी वेदर की बात करने वाले, थोड़ी सी गॉसिप, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा मिर्ची एंड बॉलीवुड के मिर्चीदार बैंगर्स भी मैं तुम्हारे लिए प्ले करने वाले हूँ। सो टर्न इट अप, स्टे विद मी एंड लेट्स मेक योर मॉर्निंग्स अ लॉट मोर मिर्चीदार। और हाँ, तुम मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। टेल मी What's up with you this morning? And now let's head straight into Mirchidar Bangers. Stay tuned and stay hot.

तुम्हारे साथ में, और चलो अब थोड़ा सा टाइम ट्रैवलिंग कर लेते हैं। आज के दिन क्या हुआ था हिस्ट्री में, लेट्स फाइंड आउट। 1897 में बोस्टन में ट्रेमोंट स्ट्रीट सबवे ओपन हुआ था, नॉर्थ अमेरिका का फर्स्ट अंडरग्राउंड रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। फिर 1939 में नाजी जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। 1952 में अर्नेस्ट हेमिंग्वे की द ओल्ड मैन एंड द सी लाइफ मैगजीन में पूरी पब्लिश हुई। 1983 में सोवियत फाइटर्स शॉट डाउन कोरियन एयरलाइंस फ्लाइट 007, किलिंग ऑल 269 पीपल ऑन बोर्ड, अ ट्रेजिक कोल्ड वॉर इंसिडेंट। 1985 में टाइटैनिक का रैकेज अटलांटिक के ओशन फ्लोर पर लोकेट हुआ। एंड फाइनली 2004 में रशिया के बेजलन स्कूल सीज की शुरुआत हुई, अ डेविस्टेटिंग ट्रेजेडी। हिस्ट्री काफी हैवी है एंड नोइंग इट कीप्स अस कनेक्टेड टू द वर्ल्ड वी केम फ्रॉम। तुम्हारे थॉट्स और रिक्वेस्ट तो मुझे भेज सकते हो इंस्टा पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर 9033 मिर्ची इज माय नंबर 9033647244। अभी स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स पर. अब वेदर चेक का टाइम आ चुका है, बिकॉज बिफोर यू स्टेप आउट लेट्स फाइंड आउट वेदर आज क्या कह रहा है. राइट नाउ इट्स 71 डिग्रीज फारेनहाइट एंड क्लाउडी, लेकिन फील हो रहा है 74 डिग्रीज फारेनहाइट तक. ह्यूमिडिटी इज बेसिकली गिविंग अस अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा हीट टुडे एंड पार्टली क्लाउडी स्काइज आर एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड टिल 2 to 3 PM एंड बाय 4 PM रेन इज एक्सपेक्टेड. सो इफ यू आर हेडिंग आउट एट दैट टाइम अम्ब्रेला को अपने साथ कैरी करना बिल्कुल नहीं भूलना है. टेम्परेचर वाइज टुडे रेंजेस फ्रॉम 70 to 87 डिग्रीज फारेनहाइट विथ फील्स लाइक रेंज फ्रॉम 73 to 89 डिग्रीज फारेनहाइट. एंड यस, आज का हाई इज अ बिट वार्मर देन यस्टरडे विच टॉप्ड आउट एट 78 डिग्रीज फारेनहाइट. एंड वी हैड अराउंड 1 millimeter ऑफ रेन इन द लास्ट 24 आवर्स एंड वी कुड सी अराउंड 15 millimeter इन नेक्स्ट 24 आवर्स. सो बेसिकली आज क्लाउड्स ने तुम्हें घेर रखा है, थोड़ी सी देर बाद टेम्परेचर वार्म हो जाएगा, लेकिन अभी रेन इज इनकमिंग. एंड बाहर निकलोगे तो लेयर के प्लेयर बनकर बाहर निकलना. वेयर योर SPF 50+++ एंड साथ साथ में कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड. एंड ऑफ कोर्स मिर्चीदार बैंगर्स सुनने के लिए मिर्ची की वाइब्स बना के रखो. मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और अब अराउंड द वर्ल्ड के अपडेट्स जानने का टाइम आ चुका है ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने मेन में एक पॉलिटिकल इवेंट के दौरान कनाडा को स्टेट कह दिया, फिर इमीडिएटली खुद को करेक्ट भी किया और करेक्ट करते हुए कहा सॉरी फ्रूडियन स्लिप, एंड फिर ऐड किया दैट वाज एक्चुअली एन एक्सीडेंट। नाउ इट वर अ प्लान्ड जॉइंट एम्फिबियस लैंडिंग एक्सरसाइज बिटवीन द यूएस एंड साउथ कोरिया हैज बीन कैंसल्ड विद सोल्स मरीन कोर साइटिंग कंस्ट्रेंट्स ऑन यूएस फोर्सेस लिंक्ड टू द ईरान war. The allies are reportedly discussing whether the drills can resume. And lastly, Bloomberg reports Apple is planning a new Mac Mini, potentially ahead of its September event. The company has reportedly tested versions with M5 and M6 chips, though it's not clear which one will make the final cut. Mac Mini is releasing after almost 2 years. एंड मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस वॉज मिर्ची आवर का 3। मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472 44। स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और आज का बर्थडे रोल कॉल इज लुकिंग मोर स्टार स्टडेड देन एनी शादी का गेस्ट लिस्ट यार. आज है सितंबर की पहली तारीख और अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है, सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू. मे योर केक भी एक्स्ट्रा चॉकलेटी या फिर कोई और फ्लेवर जो तुम्हें पसंद हो और तुम्हें गिफ्ट वो मिले जो तुम्हारे मन को पसंद हो. एंड मे नोबडी आस्क यू कि आज कितने साल के हो गए हो, बिकॉज यार शेयरिंग अ बर्थडे केक इज नॉट द सेम एज शेयरिंग योर एज. फर्स्ट अप इज आज के दिन है ज़ेंडेया का बर्थडे, द अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस यूफोरिया और ड्यून स्टार की स्टार, जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे स्पाइडरमैन यानी कि टॉम हॉलैंड से शादी भी की है. देन देयर इज जंगकुक फ्रॉम बीटीएस, ग्लोबल के पॉप सुपरस्टार. वी हैव आल्सो गॉट द लेजेंडरी सिंगर ग्लोरिया एस्टेफान, कॉमेडी आइकन लिली टॉमलिन एंड बैरी गिब, को-फाउंडर एंड लेजेंडरी वॉइस ऑफ द बीजीज. एंड फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टीवी एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर फिल, बॉक्सिंग लेजेंड रॉकी मार्सियानो एंड फॉर्मूला वन रेसर कार्लोस साइंस जूनियर. सो वेदर टुडे इज योर बर्थडे और योर Just here for your celebrity role call. Make today count. Send me a birthday shout out अपने लिए, अपने दोस्त के लिए. Request भेजो WhatsApp पर 9033647244. That's my number. And Instagram or X पर मेरा handle है Mirchi Priss. That is MIRCHIPRIS. Stay tuned and stay hot.

0: दिस इज प्रिसिला विद यू सुमृति मिर्ची मॉर्निंग्स और अब सुनने वाले हो गोल्ड कार लेटेस्ट रेट अपडेट।
1: राज ज्वेल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,390 $4,390 पर ट्राई अउंस गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। सिल्वर ऑल्सो ट्रेंडिंग हायर एट $65 $65 पर ट्राई अउंस आज सिल्वर ट्रेड कर रही है। हालांकि गोल्ड $5,600 एंड सिल्वर $120 पर ट्राई अउंस की पीक टच कर चुके हैं और इस समय करेक्शन के साथ गोल्ड $4,390 एंड सिल्वर $65 पर ट्राई अउंस ट्रेड कर रहे हैं। दिवाली पुष्य नक्षत्र इससे पहले गोल्ड वापस अपवर्ड एग्रेसिव ट्रेंड ले आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें rajjewels.com पे जहां पे 0% इंटरेस्ट पे जीरो फाइनेंसिंग जीरो डाउन पेमेंट के साथ आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए ज्वेलरी घर ले जा सकते हैं और 9 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दे सकते हैं rajjewels.com की टीम को। कैसे आइए लाइफ के प्रेशियस पल सेलिब्रेट करें एट rajjewels.com। थैंक यू
0: एंड देयर यू हैव इट लेटेस्ट गोल्ड रेट अपडेट एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स विद मी प्रिसिला। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची। दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

लेट्स फाइंड आउट देश और दुनिया में क्या चल रहा है. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और मिर्ची मॉर्निंग्स. सबसे पहले इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी शेयर्ड अ सेल्फी वीडियो सेलिब्रेटिंग 7.8 जीडीपी ग्रोथ इन क्वार्टर वन ऑफ FY27 एंड अर्ज्ड पीपल टू अवॉइड फॉरेन ट्रैवल एंड बाइंग गोल्ड, सेइंग इंडिया इज मूविंग अहेड डिस्पाइट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट. नंबर टू परफॉर्मर लॉस एंजलिस गैंग मेंबर ड्वेन कैफे डी डेविस हैज बीन फाउंड गिल्टी इन द 1996 मर्डर ऑफ रैपर टुपाक शकूर नियरली 30 ईयर्स आफ्टर टुपाक वॉज किल्ड इन लास वेगास. Davis was accused of organizing the killing following a confrontation involving his nephew and members of Tupac's entourage. A long-running case, a major verdict, and a reminder that justice can sometimes take very, very long route. And lastly, from sports, Lionel Messi has retired from international football. After that, his wife Antonella Roccuzzo shared a beautiful tribute, posting pictures with their sons Diego, Matteo and Ciro and saying how proud she is of him. Because behind every goat moment, there often is a family supporting the man. And that's it for Mirchi Awaka 3. Main hoon Prisila tumhare saath mein. Mujhse connect karo. Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X. And WhatsApp number hai 9033647244. Now let's head into Mirchi Dar Bangers. Stay tuned and stay hot.

0: की है यहाँ।
1: आज के सितारे क्या कह रहे हैं पता करने का टाइम आ चुका है। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है प्रिसला, ये है मिर्ची मॉर्निंग।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: एरीज यानी कि मेष राशि, आज स्टबन लोगों से आर्ग्यूमेंट अवॉइड करो, मूड खराब करने का कोई फायदा नहीं है, स्पेशली जब फाइनेंशियल गेन्स का सीन पॉजिटिव है, पैसा आ रहा है, पेशेंस भी आ जाएगा। लकी कलर इज स्टील, लकी नंबर इज 7। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, टुडे इज गिविंग सेल्फ केयर एनर्जी, थोड़ा सा रिलैक्स करो, बॉडी का ख्याल रखो, फाइनेंशियल गेन्स जो है वो मॉडरेट है और सीनियर्स की एडवाइस काम आ सकती है, मतलब बॉस की बात कभी कभी सुन लेनी चाहिए। आज का लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर 24। जेमिनी यानी मिथुन राशि, हेल्थ को प्रायोरिटी दो, स्पेशली इफ यू मॉनिटर योर ब्लड प्रेशर। इनकम के एफर्ट्स दो लुक प्रॉमिसिंग, सो हसल करो, बट बॉडी को सीन पर मत छोड़ो। लकी कलर फॉर यू इज कोरल एंड लकी नंबर इज 11। कैंसर यानी कर्क राशि, इन्फ्लुएंशियल पीपल आज तुमको सपोर्ट कर सकते हैं, मोरल बूस्ट होगा और फाइनेंसिस भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली यूनिवर्स कह रहा है बेब यू गॉट दिस। लकी कलर फॉर यू इज एमरल्ड, लकी नंबर इज 36। लियो यानी कि सिंह राशि, स्ट्रेस और वरी से टेंशन हो सकती है और अनएक्सपेक्टेड बिल्स आ सकते हैं, बट फाइनेंशियल टास्क टाइम पर कंप्लीट होंगे, मतलब बिल आएगा लेकिन पैनिक का सब्सक्रिप्शन नहीं आने वाला है। लकी कलर फॉर यू इज गोल्ड, लकी नंबर इज 18। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्गो यानी खन्या राशि, लो मूड को बीट करने के लिए स्माइल हैंडी रखो, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहो, डबल चेक बिफोर यू क्लिक। लकी कलर फॉर यू इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 42। एंड दैट्स राशि जोन पार्ट 1। बाकी की 26 राशियों को लेकर पार्ट 2 में अभी हाजिर होती है प्रिसला। तब तक तुम सुनो ये मिर्चीदार बैंगर्स एंड गो एंड चेक आउट माय इंस्टाग्राम एंड एक्स प्रोफाइल्स। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9033647244 पर। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: यूनिवर्स तुम्हें आज क्या मैसेज दे रहा है पता करते हैं। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में। दिस इज राशि जोन ऑन मिर्ची मॉर्निंग।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लीब्रा यानी तुला राशि, स्केड्यूल हेक्टिक हो सकता है लेकिन हेल्थ स्टेडी रहेगी। फाइनेंशियल गेन्स भी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं लेकिन डिसिप्लिन में मूव करो। इम्पल्सिव शॉपिंग को थोड़ा सा होल्ड पर रखो। लकी कलर इज पीच। लकी नंबर इज 9। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, सोशल सिचुएशंस में सडन इम्पल्स या स्टबर्ननेस से बचने की जरूरत है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिल्कुल क्लियर रखो। जो पैसा है उसको मिस्ट्री नॉवल मत बनाओ। लकी कलर फॉर यू इज इंडिगो। लकी नंबर इज 27। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, पर्सनल मैटर्स मेंटल पीस को चैलेंज कर सकते हैं लेकिन बिजनेस और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सॉल्व होने के चांसेस काफी स्ट्रांग है। दिल बोलेगा हड़प्पा और ड्रामा, दिमाग बोलेगा लेट्स हैंडल द स्प्रेडशीट फर्स्ट। लकी कलर फॉर यू इज क्रिम्सन। लकी नंबर इज 14। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, इमोशंस कंट्रोल करना थोड़ा सा टफ लग सकता है लेकिन फाइनेंशियल पिक्चर बेटर हो रही है। सो ब्रीद, नॉट एवरी फीलिंग नीड्स अ रिप्लाई। लकी कलर फॉर यू इज मिंट। लकी नंबर इज 31। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, सीनियर्स की तरफ से वर्क प्लेस प्रेशर थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकता है और फाइनेंशियल एक्टिविटी और गुड न्यूज तुम्हारा मोमेंटम बूस्ट करने वाली है। बॉस का मूड वेदर की तरह है, फोकस अपने फोरकास्ट पर रखो। लकी कलर फॉर यू इज सिल्वर। लकी नंबर इज 22। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइसेस यानी मीन राशि, फाइनेंशियल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है लेकिन लव्ड वंस की लॉयल्टी और सपोर्ट से हैप्पीनेस भी मिल सकती है। समटाइम्स द बेस्ट वेल्थ इज हैविंग योर पीपल इन योर कॉर्नर। लकी कलर इज रोज पिंक। लकी नंबर इज 45। एंड दैट्स इट फॉर राशि जोन। मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में। ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। जल्दी से जाकर मुझसे कनेक्ट कर लो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

लेक्चर खत्म होने वाली है. मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में ये है मिर्ची मॉर्निंग्स और मेरे जाने का टाइम शुरू हो चुका है. लेकिन जाने के पहले तुम्हें एक पिक्चर के बारे में बताती हूँ, विच इज 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म अब तक. हनुमान अंश नाम की ये फिल्म, विच इज रिपोर्टेडली मेड ऑन अ शूस्ट्रिंग बजट ऑफ अमाउंट 2 करोड़ रुपीज, हैज रेक्ड इन नियरली 2000% ऑफ प्रॉफिट, मेकिंग इट वन ऑफ 2026's मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म्स. लेकिन ट्विस्ट ये है कि फर्स्ट वीक में इस फिल्म ने काफी स्ट्रगल किया था, लेकिन सेकेंड वीक तक बस इतना ज्यादा बढ़ गया कि एग्जिबिटर्स को एड ऑन करने पड़े शोज, एंड सडनली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में प्रॉपर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, मोमेंट था भाई. मीनवाइल धुरंधर 2, जो इस साल की सबसे सक्सेसफुल मूवी थी, उसने 1000% का प्रॉफिट बनाया. एंड दिस मूवी, हनुमान अंश नाम की जो मूवी है, इसने 2000% का प्रॉफिट बनाया है. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी और मॉरल ऑफ द बॉलीवुड स्टोरी इज कि कभी कभी फर्स्ट वीक में तुम्हारा परफॉर्मेंस बिल्कुल लुल रहता है, लेकिन पिक्चर देखने के बाद लोग जब उसे पसंद कर लेते हैं तो सेकेंड वीकेंड तक पब्लिक बोलती है भाई क्या पिक्चर बनाई है. एंड दैट्स माई क्यू टू से थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर मॉर्निंग्स विथ मी. मेरा नाम है प्रिसला. वेदर यू वर ड्राइविंग टू वर्क, गेटिंग द किड्स रेडी, और सीक्रेटली लिसनिंग व्हाइल प्रिटेंडिंग टू बी मोर प्रोडक्टिव, आई वॉज विथ यू. थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी. नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ मिर्ची मॉर्निंग से, लेकिन मिलूंगी कल तुम्हें सेम टाइम सेम प्लेस पर. तब तक के लिए यू स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप दैट मिर्ची वॉल्यूम अप, क्योंकि आने वाले मिर्चीदार बैंगर्स. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

Energy. It's hot.

0: कुछ ऐसा होता है ना कि आप कुछ पढ़ लेते हो और वो चीज जो है वो आपके दिमाग में जाकर एकदम सही जगह पर पिंच करती है। ऐसा ही कुछ मैंने कल पढ़ा, और जब मैंने पढ़ा ना तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। मैंने कहा यार ये तो मैं आपको सुना के रहूंगी।
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tuned in with me on Mirji. और मैंने ना चंद लाइन्स पढ़ी और मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो कितना रेजोनेट करता है यार लाइफ से। मैंने कहा कि यार आप बड़े शौकीन हो इन सारी चीजों के, तो आपको भी सुनाती हूँ ये चीज। तो बात कुछ ऐसी है कि एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था, चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितलियों का दीवाना था, थक कर आना स्कूल से फिर भी खेलने जाना था, बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था, रोने की वजह ना थी ना हंसने का बहाना था, क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था। देखा, लगा ना, वाकई में लगा ना, मतलब हम अपनी लाइफ में अलग ही अडल्टिंग का जोन जो है वो लेकर बैठे हुए होते हैं, अपनी लाइफ चल रही होती है, कट रही होती है, फिर एकदम से आप कुछ पढ़ लेते हो, आप कुछ देख लेते हो और फिर आपको लगता है ओ नो, हाँ यार वो भी क्या जमाना था और बचपन हमें जरूर याद आना था। तो चलो फिर थोड़ा और याद करते हैं 90 के जमाने को, और मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को उसी तरफ घुमाती हुई 90s के गियर में डालती हुई आपसे कहती हूँ, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मेरा ना समीर सोनी पर बहुत बड़ा क्रश था एंड आई न्यू ही इज अ मॉडल क्योंकि मैंने ना उनकी एक झलक दूध दूध दूध दूध वो वाले एड में देखी थी और मैं जब भी देखती थी ना देख देख कर उछल जाया करती थी। तो जब उनकी मूवी चाइना गेट आई उसे मैं कैसे मिस कर सकती थी यार।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड नहीं, मैं इतना डिसीजन मेकिंग में नहीं थी कि सबको उठा के थिएटर लेकर चली जाती कि नहीं नहीं मुझे चाइना के थिएटर में देखनी है। नहीं नहीं, इतनी हम लोगों की औकात नहीं हुआ करती थी एज किड। ये तो केबल पर जब मूवी आई तो मैंने उसको मिस नहीं किया। एंड वेल, ये समीर सोनी की डेब्यू फिल्म तो थी ही थी लेकिन टेक्निकली समीर सोनी वॉज नॉट अ हीरो इन द फिल्म, ही वॉज एक्चुअली डूइंग अ सपोर्टिंग रोल क्योंकि मेन लीड्स तो यार अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, डैनी डोंगजप्पा, ओम पुरी ये सब थे और इस फिल्म में समीर सोनी के ऑपोजिट थी ममता कुलकर्णी। लेकिन क्या आपको पता है कि जो चाइना गेट का पोस्टर बना था ना उस पर ममता कुलकर्णी कहीं नजर नहीं आई थी। और इसके पीछे रीजन ये है कि ममता कुलकर्णी और राजकुमार संतोषी के बीच में एक मेजर फॉलआउट हुआ था। हालांकि इस लड़ाई के बाद वो वापस मूवी करने के लिए आई तो सही लेकिन उसके बाद राजकुमार संतोषी ने उन्हें अपनी फिल्म में ज्यादा प्रमोट नहीं किया और जो पोस्टर बना चाइना गेट का उसमें बाकी सारे एक्टर्स के साथ उर्मिला मातोंडकर की पिक्चर लगाई गई ना कि ममता कुलकर्णी की। हालांकि उर्मिला वॉज इन द फिल्म फॉर जस्ट वन सॉन्ग एंड दैट वॉज छम्मा छम्मा। लेकिन ऑनेस्टली आई मीन पूरी फिल्म करने के बाद भी ममता को इतना नाम नहीं मिला जितना कि उर्मिला मातोंडकर को एक गाना करने के बाद मिला था। लेकिन क्या आपको पता है इस पूरी कास्ट में एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने अपना रोल निभाने के लिए न जाने कितने दिनों तक नहाया ही नहीं था। बताऊंगी आपको आगे थोड़ी देर में। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया. बोलो ये कौन सी मूवी का डायलॉग है?
0: Mirchi. Chat room.
1: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा और सही जवाब है चाइना गेट. मतलब चाइना गेट में न जाने कितने सारे ऐसे डायलॉग्स थे जो कि आज तक मुझे याद है. एक तो ये डायलॉग एंड देन देयर वाज दिस वन और डायलॉग जिसमें कि प्लेटफॉर्म का सीन होता है और एक जनाब दूसरे जनाब से पूछ रहे होते हैं कि भाई साहब आपके बजे में कितने घड़े हैं. अगला इंसान कहता है नौने पौ. I still use this dialogue in my life. अगर पौने नौ बज रहे होते हैं और कोई मुझसे पूछ ले कि कितने बज रहे हैं तो मैं नौने पौ ही बोलती हूँ, पौने नौ नहीं बोलती. लेकिन कमिंग बैक टू चाइना गेट, हाँ, ये जो फिल्म बनी थी इसके अंदर जो जगीरा का रोल प्ले करने वाले मुकेश तिवारी थे, जिनकी की ये पहली ही फिल्म थी, उन्हें न जाने कितने सारे अवार्ड्स में नॉमिनेट किया गया था फॉर हिज विलेनियस रोल. हाँ, और किया भी क्यों ना जाना चाहिए था, इतना सराहा गया था उनका ये कैरेक्टर बिकॉज उन्होंने काम ही ऐसा किया था. लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि अपने कैरेक्टर को बरकरार रखने के लिए, उसका लुक मेंटेन करने के लिए और जगीरा जैसा फील करते रहने के लिए मुकेश तिवारी ने न जाने कितने दिनों तक नहाया ही नहीं था. हाँ जी, वो बिल्कुल अपना परफ्यूम इस्तेमाल किया करते थे एंड ही डिड नॉट टेक अ शावर जस्ट सो दैट ही लुक्स एज गंदा एज जगीरा. इसे कहते हैं मेथड एक्टिंग. सर्दियों में हम भी यही करते हैं. हाँ, वी ऑल्सो टेक अप अ कैरेक्टर एंड वी वॉन्ट टू लुक लाइक दैट कैरेक्टर एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन कि बहुत सारे लोग शावर नहीं ले रहे होते हैं सर्दियों में. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आपको दूरदर्शन का गुमशुदा की तलाश सेगमेंट याद है?
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। डीडी वन पर रोज शाम को जब न्यूज आया करती थी तो उसमें एक सेगमेंट हुआ करता था गुमशुदा की तलाश। याद तो हो गई यार, जो आज हमारे लिए अपने दोस्तों के लिए एक ताना बन के रह गया है कि हम अब उनके लिए कहते हैं कि तुम आते नहीं हो इसलिए हमें गुमशुदा की तलाश है। लेकिन ये कभी एक सीरियस सेगमेंट हुआ करता था जहां गुमे हुए लोग जो है उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही होती थी वाया द टेलीविजन। बट एक राज की बात बताऊं मैं आपको, जब इस सेगमेंट में गुमशुदा लोगों की पिक्चर स्क्रीन पर दिखाई जाती थी ना, तो ऑनेस्टली अगर वो इंसान मेरे पास भी बैठा होता ना तो मैं भी उसे नहीं पहचान पाती। वैसे तो आज भी किसी लड़की का फोटो देखकर उसे ढूंढना मुश्किल हो जाए, क्योंकि बिना मेकअप ऑफ कोर्स किसी का चेहरा समझ नहीं आता और बिना मेकअप कोई आजकल फोटो नहीं खिंचवाता। बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, हम बच्चे ना इस सीरियस सेगमेंट को मजाक बना दिया करते थे। जब कोई फोटो स्क्रीन पर दिखती थी ना तो हमारा बोलना शुरू हो जाता था एक दूसरे की टांग खींचते हुए और एक दूसरे को छेड़ते हुए कि अरे देख तेरी फोटो दिखा रहे हैं टीवी पर। और पता नहीं इसमें छेड़ने वाली बात क्या थी और छिड़ने वाली बात क्या थी कि छेड़ने वाला छेड़ता था और छिड़ने वाला भी बुरी तरीके से तुनक जाता था और छिड़ जाया करता था। बट जो भी था भाई, बात ये भी कितनी सही है ना कि आज किड्स हम सीरियस चीज में भी फन ढूंढ लेते थे। एंड आई होप कि आप आज भी इस प्रथा को फॉलो करते हो, बिकॉज लाइफ को हम सीरियसली नहीं ले सकते बाबू मुशाए। क्यों? क्योंकि लाइफ इटसेल्फ इज यूज्ड टू क्रैकिंग जोक्स ऑन अस। इसी बात पर ताल से ताल मिला। कमिंग अप दिस नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: ये वो गाना है जो आपको ऑफिस में वायरल कर सकता है। मोहित चौहान ने गाया इतनी मस्ती में ना इस गाने को, आई स्वेयर। यू नो व्हाई आपको वायरल कर सकता है? क्योंकि अगर इस गाने को आप ईयरफोन्स पे सुन रहे हो ना, तो आप आसपास की दुनिया जो है ना उसको तो भूल ही जाओगे, और फिर आसपास की दुनिया को भूलने के बाद जो आप अपने आप में खो जाओगे और नाचते हुए नजर आओगे और अजीब अजीब सी आप क्रियाएं करते हुए नजर आओगे ना, तो ऑफकोर्स वायरल होना तो बनता है ना बॉस। ये गाना ही वही है जो आपको दुनिया भुला देता है, आपकी करंट प्रॉब्लम्स जो है वो भुला देता है, और आपको सिर्फ और सिर्फ जिंदगी की ताल पर नहीं, इस गाने की ताल पर नचा देता है।
1: सारा जमाना ए सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और हम जो म्यूजिक के इतने दीवाने हैं मेरे यारा, वही तो आ जाते हैं रोज रोज ये कहने के लिए कि मान ना मान करो गानों की पहचान। अब सिंस मुझे पता ही है कि आप म्यूजिक के इतने फैन हो और म्यूजिक आपके लिए थेरेपी है, तो यहीं पर मैं एक दाव खेल जाती हूँ और रोज आपके लिए एक सवाल गाने की सूरत में चलाती हूँ और दो गानों की धुनों को मिक्स करके आती हूँ और आपसे पूछती हूँ कि बताओ यार ये दोनों गाने कौन से हैं। तो आज की जो दो धुनों का मिक्स है वो है कुछ यूं, गिव इट अ लिसन।

बस जी, अब आपको डीएम करना है माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा और बता देना है कि ये दो कौन से गाने हैं जो अभी आपने सुने। मिर्ची सारा इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, याद रखिएगा एंड स्टे ट्यून्ड रहिए विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: I'm not too sure आपने अर्जुन रामपाल और मनीषा कोइराला की मोक्ष देखी है कि नहीं, क्योंकि ये फिल्म कब आई कब गई पता ही नहीं लगा, लेकिन मैंने जरूर देखी है क्योंकि यार केबल पे जो फिल्म आती थी ना रात के 12 बजे के बाद वो मैं डेफिनेटली देखा करती थी।
2: Mirchi, Thugs of Filmistan.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, ये फिल्म नहीं, लेकिन इस फिल्म का एक गाना ऐसा है जिसकी पूरी की पूरी धुन, यानी कि जो म्यूजिक है इस पूरे पूरे गाने का, वो कट कॉपी पेस्ट है, थैंक्स टू मिस्टर राजेश रोशन, जिनका म्यूजिक इस गाने में दिया गया है। द गाना इज दिस वन।

0: जो सनसनाए, क्यों जिस्म थर थराए, कोई बताए मुझको।
1: और इसे उठाया गया है फ्रॉम एन आर्टिस्ट जिनका नाम है वैंगेलिस, और इन्होंने ये म्यूजिकल कॉम्पोजिशन बना के बस छोड़ दिया था शायद इसी दिन के लिए कि एक दिन राजेश रोशन आए, यही म्यूजिक ऐसा का ऐसा उठाएं और इसको अपने गाने के बेड पे लगाएं और गाना चलाते जाएं।

फिलहाल के लिए डेफिनेटली नॉट दिस ट्रैक, लेकिन कमिंग अप अनदर वन आपके लिए, झूम जाओगे। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: हम आपके एक और एक ऐसी फिल्म है जिसको मैंने 175 बार देख लिया होगा और आज भी देर इज अ डे जब मूड बनता है और हम एक दूसरे को कहते हैं हम आपके एक और देखे क्या
2: ये है नब्बे की गप्पे।
1: हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा। देखो यार जज करना है तो जज कर लो, मैं तो भाई हूँ सूरज भरजातिया फैन, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। और हम आपके कौन को इतनी बार देखने के बाद वर्ड टू वर्ड, डायलॉग टू डायलॉग और सीन टू सीन मुझे चीजें याद हैं। नाउ देयर इज अ सीन जब घर में खुशखबरी आती है, यानी कि बच्चे की किलकारी जो है वो सुनाई देती है। सब हॉस्पिटल में जो थिएटर होता है ऑपरेशन थिएटर, उसके बाहर वेट कर रहे होते हैं कि कब बच्चे की किलकारी आए और धिकताना गाना वहीं से ही शुरू होता है, राइट। एंड जब डॉक्टर चाची जो है वो बाहर आती हैं और ये खबर सुनाती है कि लड़का हुआ है, एट दैट टाइम सलमान खान एकदम एक्साइटेड होकर हिमानी शिवपुरी को अपनी गोद में नहीं उठा लेते, दैट इज डॉक्टर चाची इन द मूवी हम आपके हैं कौन। उस वक्त दैट सीन वॉज एक्चुअली नॉट प्लान्ड, वो सलमान खान ने एकदम से कर दिया था। एंड हिमानी शिवपुरी का इस पर रिएक्शन ये था कि उन्होंने हल्के से ना सलमान खान को एक चाटा मार दिया था, बिकॉज वो चौंक गई एकदम से कि ये क्या हुआ। And she in an interview told कि you know सलमान खान was a prankster and you know ऐसी हरकतें वो कुछ ना कुछ करते ही रहते थे और ये भी एक वैसी ही सी हरकत थी। अब ये सारी चीजें जो है उस सीन में कैमरे पे कैप्चर हुई तो सूरज भरजातिया ने भी डिसाइड किया कि इस सीन को रखते हैं, हम इसमें टेक नहीं लेते हैं बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये अच्छा लग रहा है। एंड एक्चुअली ये कितना अच्छा लग रहा है, आई एक्चुअली लव दिस सीन जब वो डॉक्टर चाची को गोद में उठा के बच्चे की तरह खिला रहे होते हैं। आज के जमाने में है कोई माइका लाल जो ऐसा कर सकता है? ना मुन्ना ना, बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: डियर, आजकल के जमाने के नेम लेबल और हमारे टाइम में स्टिकर कहलाने वाले।
2: यादों को चिट्ठी।
1: आज स्टेशनरी देखती हो ना तो चौंक जाती हूँ। आजकल तुम्हें पता है, जो तुम्हारी आज की पीढ़ी है उन पर तो नाम लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उन पर नाम टाइप ही आते हैं, मेड टू ऑर्डर। लेकिन बैक इन आवर स्कूल टाइम्स, स्कूल खुलने से पहले इट यूज्ड टू बी अ टास्क कि हम मम्मा के साथ बैठकर अपनी बुक्स और कॉपीज पर कवर चढ़ाया करते थे, फिर उसके बाद तुम्हें चेरी ऑन द टॉप की तरह बुक्स पर लगाया करते थे, और फिर लास्ट लेग होता था सब किताबों पर हमारा नाम, क्लास और सेक्शंस लिखे जाना। और तुम होते भी तो कितनी वैरायटी के थे यार, कहीं फ्लावर्स वाले तो कहीं कार्टून्स वाले। और बीटी तो तब होती जब स्कूल अपनी तरफ से बोरिंग वाले लेबल्स खरीदने को कंपल्सरी कर चुके थे, तब लगता था कि कितना काम है यार। लेकिन आज जो काम करते हैं उनके बीच लगता है कि यार वो भी क्या मस्त काम हुआ करता था जिसे हम कितनी सीरियसली लिया करते थे। एक दिन अपने फन के लिए आई डिसाइडेड कि आज मैं अपने नेफ्यू की किताबों पर कवर्स चढ़ाऊंगी और स्टिकर्स लगाऊंगी और उनपे उसका नाम, क्लास, सेक्शन ये सब लिखूंगी। मैं बड़ी एक्साइटेड थी इस काम को लेकर। फिर पता लगा कि मेरी भाभी ने तो किसी को पैसे देकर ये काम करवा लिया है और लेबल पर नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एवरीथिंग इज प्रिंटेड। सुन रहे हो, तुम्हारी आज

की जनरेशन भी ना काफी तरक्की कर चुकी है, लेकिन मुझे फिर भी तुम पसंद हो। तुम्हें आज भी अपने ख्यालों में पड़ती तुम्हारी सारा। And now coming up a track, जो आज तो प्यार मोहब्बत की याद दिलाता है, लेकिन ये डायलॉग हमने क्लास मॉनिटर्स से बहुत सुना है जब हम बातें खूब किया करते थे क्लास में। तो क्लास मॉनिटर्स यही कहा करते थे कि कुछ ना कहो। Stay tuned with me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: उफ, ये सवाल हम अक्सर प्यार से करते ही करते हैं। कौन सा सवाल भाई? कैसेट की साइड ए का दूसरा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में दिस नशीला गाना। बट डू यू नो, इस गाने की म्यूजिक की इंस्पिरेशन एग्जॉर्सिस्ट 2 मूवी की रीगन थीम से ली गई है। बट इजंट इट कूल कि पल में डराने वाली म्यूजिक को बड़ी खूबसूरती से प्यार में गिराने वाली म्यूजिक बना दिया। और ये काम करने वाले इंसान थे द म्यूजिक कंपोजर ऑफ दिस ट्रैक संदीप चौटा। और इस गाने में ना मुझे ये लाइन बहुत ऐप लगी कि पहली दफा उसे देख कर होने लगा कुछ ऐसा असर, खुद से हुई मैं बेखबर, मैं हूँ यहाँ दिल मेरा है वहाँ। अरे अरे अरे अरे, आप कहाँ चल दिए, अभी तो ये गाना आपको पूरा सुनना है यार, तब इस गाने में गहराई से खो जाइएगा, पर पहले मेरा खुदा हाफिज कबूल तो करिए। तो इसी के साथ मैं आपसे कहती हूँ हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी यहाँ के अलावा मैं आपको मिली जाती हूँ ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। अपना ख्याल रखिएगा और हम फिर मिलेंगे, सेम प्लेस सेम टाइम बट नॉट द सेम डे। स्टे ट्यून टू मिर्ची इट्स हॉट।
3: Radio Mirchi, it's hot.
4: Mirchi, it's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
2: Mm-mm.

0: लगाए
1: अटक गया
2: क्यों
1: कोई फर्क नहीं अलबत्ता कोई फर्क नहीं अलबत्ता
3: कोई फर्क नहीं अलबत्ता कोई फर्क नहीं अलबत्ता
0: दुखी बेदुखी

पुरानी जीन्स पर हेलो हेलो, मैं हूँ श्रेया और आज ना पुरानी जीन्स पे उस जमाने के गानों के साथ बात होगी बेगम मुमताज जहान दहलवी की। क्या कह रहे हो, नहीं पहचाने? अरे बिल्कुल जानते हो भाई। चलो एक हिंट देती हूँ कि जब भी कोई बला का खूबसूरत लगता है ना तो उसको कॉम्प्लीमेंट में कहा जाता है। क्या बात है, आज तो बिल्कुल मधुबाला लग रही हो। सो यस, आज होगी मधुबाला जी की बातें। शुरुआत करेंगे एक ऐसे काम से जो मधुबाला जी को बहुत पसंद था। जैसे ही शूटिंग खत्म होती थी ना, वो ये काम जरूर करती थी और वो करने से ना उन्हें फ्रीडम महसूस होता था, आजादी लगती थी। क्या था वो काम? अब आपको तो मेरी आदत इतने दिनों से पता ही चल गई, सब कुछ एक बार में नहीं बताती हूँ। सो कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स। मैं हूँ श्रेया।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3
0: मिर्ची, इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, वेद इस जमाने की श्रेया। पुरानी जीन्स पे ना आज बात हो रही है मधुबाला जी की। तो मैं बता रही थी कि कैसे उनको एक चीज बेहद पसंद थी, इनफैक्ट वही एक चीज उनको अलाउड भी थी। शूटिंग जब खत्म हो जाती थी तो उनके अब्बा यानी अताउल्ला खान बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। मधुबाला जी को ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि उन्हें सीधे सेट से घर और घर से सेट जाना है। ऐसे में वो अपना फ्रीडम, अपनी आजादी पता है किस में ढूंढती थी? ड्राइविंग में। उन्हें ड्राइविंग करना बेहद पसंद था, तो हमेशा ड्राइवर को पीछे बैठाती थी और घर का एक लंबा रास्ता लेते हुए वापस जाती थी। पुरानी जीन्स पर आज उन्हीं की बातें उनके गानों के साथ, तो बस कहीं भी मत जाना। मैं हूं श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये मधुबाला नाम की किताब कैसे खुली? मेरा मतलब है कि मधुबाला जी की जर्नी कैसे शुरू हुई, अभी बताती हूँ। पुरानी जींस पर हाय, मैं हूँ श्रेया। उनके अब्बा यानी अताउल्ला खान जी काम करते थे पाकिस्तान में। पेशावर में एक कंपनी थी जिसका नाम था इम्पीरियल टोबैको कंपनी। वहाँ से एक दिन उनकी नौकरी छूट गई, वो अपने पूरे परिवार को लेकर के दिल्ली आ गए। उसके बाद काम ढूंढते ढूंढते मुंबई आए। मुंबई में जब वो काम करने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि बॉलीवुड में, यानी तब तो ये इंडियन सिनेमा कहलाया जाता था, वहाँ पर एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत है। अताउल्ला खान जी को ये तो पता था कि उनकी बेबी मुमताज यानी मधुबाला बेहद खूबसूरत है, तो बस वो उनको लेकर के अगले दिन पहुंच गए स्टूडियोज, और वहां पे बेबी मुमताज ने की अपनी पहली मूवी एज चाइल्ड आर्टिस्ट। इस मूवी का नाम था बसंत, वे बैक 1942 में। उसके बाद मधुबाला जी ने कई सारी फिल्मों में काम किया, फुलवारी, पुजारी, राजपुतानी, बहुत सारी। बस यहीं से उनकी जिंदगी में भी ट्विस्ट एंड टर्न भी शुरू हो गए। अभी इनके बारे में बताऊंगी, गानों के उस पार मिलते हैं ना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, वो पहली फिल्म कौन सी थी जिससे मधुबाला जी ने अपने करियर की शुरुआत करी एज लीड एक्ट्रेस? बताओ बताओ। पुरानी जीन्स पर, हाय मैं हूँ श्रेया। यू नो व्हाट, सिर्फ 14 साल की थी वो जब लीड एक्ट्रेस बन गई थी। 14 बोले तो मतलब अगर आप स्कूल में हो तो 8th या 9th क्लास में होगे। और उनके ऑपोजिट एक ऐसे एक्टर थे जो इंडस्ट्री में थे तो बहुत टाइम से, लेकिन एक बड़ी फिल्म की तरह उनकी भी ये पहली फिल्म थी। एंड इट वॉज नन अदर देन राज कपूर साहब। मूवी का नाम था नील कमल, जिसमें दोनों अपने बड़े बड़े सपने लेकर के मैदान में उतरे थे। अभी तो उस जमाने के और भी बहुत सारे किस्से बाकी हैं, तो जल्दी से गाने सुन करके वापस आओ विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: सामने वो देख रहे एक ट्रक आ रहा।
1: झूठ मत बोल, आ नहीं जा रहा।
0: देखो आँख मारे लाल लाल सिग्नल,
1: सिग्नल को तोड़ दो बात बड़ी सिंपल।

0: हल्ला मचाएंगे धुल्ला मचाएंगे एंड बाजा बाजेगा ठम ठम ठम। हे मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम।
1: मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम।
2: जब भी कोई बहुत खूबसूरत होता है तो कहते हैं ना, आहा क्या मधुबाला लग रही हो। तो आज बस मधुबाला जी की बातें बैक टू बैक श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जींस। हाँ, तो मैं बता रही थी कि एज अ लीड लेडी उनको उनका पहला ब्रेक मिला राज कपूर के ऑपोजिट। ये फिल्म थी बहुत पुरानी 1947 की, नीलकमल। ये बनाने वाले थे केदार शर्मा साहब। अच्छा, बहुत कम लोगों को पता है कि राज कपूर के साथ उन्होंने कई सारी फिल्में की हैं। एन एम केलकर की एक फिल्म आई थी अमर प्रेम, ना ना ना राजेश खन्ना वाली नहीं, बल्कि इसमें थे राज कपूर अगेन पेड अप विथ मधुबाला जी। एक फिल्म आई थी मोहन सिन्हा की जिसका नाम था दिल की रानी, इसमें भी राज साहब और मधुबाला जी थे। एक्चुअली में राज कपूर और मधुबाला जी की जो केमिस्ट्री थी इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, बिकॉज काफी पुरानी बात है 1940s और 50s की। आज मैं पता करके आई थी तो आपके साथ शेयर कर ली। आगे कौन कौन से किस्से हैं सब बताऊंगी, वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जींस।

Mirchi. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: आई वॉन्ट टू लिव द स्टोरी ऑफ मधुबाला,
1: ये लिखने वाले थे कातिजिया अकबर।
0: पुरानी जीन्स पे हाय, मैं हूँ श्रेया और आज मधुबाला जी की बातें बैक टू बैक चल रही हैं। सो मैं बता रही थी कि ये जो बुक थी ये मधुबाला की बायोग्राफी थी जो अकबर साहब ने लिखी थी। उसमें ना उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात मेंशन की है। ही सेड कि मधुबाला इतनी खूबसूरत थी, इतनी वाइट थी, उनकी स्किन ऐसे आर पार दिखती थी, एकदम ट्रांसलूसेंट थी, कि जब भी वो पान खाती थी, एंड बाय द वे पान खाने की काफी शौकीन थी, तो उनके थ्रोट से, उनके गले से उतरता हुआ पान तक दिखता था। मतलब ये बोलते हुए भी ना मेरे गूज बम्स आ रहे हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि काश हमने मधुबाला जी को देखा होता। अच्छा, आपकी फैमिली में भी कोई ना कोई जरूर उनका जबरदस्त फैन होगा, जैसे मेरी फैमिली में मेरे पापा। और आप क्या, कौन है बताना मुझे। फेसबुक और इंस्टा पे मिल सकते हो आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREYA श्रेया विद लव, ये है मेरा हैंडल। अभी और भी बातें बाकी, सो वापस आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मधुबाला जी सेट पे हमेशा पंक्चुअल।
1: पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। जितने भी लोगों ने मधुबाला जी के साथ काम किया है और कभी उनके बारे में लिखा है, तो उनकी पंक्चुअलिटी के बारे में जरूर लिखा है। उनकी लार्ज फैमिली को पैसे का सपोर्ट देने वाली इकलौती मधुबाला जी थी, और कहते हैं कि वो मशीन की तरह काम करती थी, अपना ख्याल कम रखती थी, खाना मिस करती थी, और मेट्रो के ओवरक्राउडेड कंपार्टमेंट में मलाट से दादर, दादर से मलाट करती रहती थी, पर कभी भी सेट पे एब्सेंट या लेट नहीं होती थी। पुरानी जीन्स पर आज उन्हीं की बातें बैक टू बैक चलेंगी ना श्रेया के साथ, सो कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

दोस्त बनाना अलाउड नहीं था, पार्टीज जाना अलाउड नहीं था, फिल्मों के प्रीमियर अटेंड करना अलाउड नहीं था, फिल्म फेस्टिवल्स जाना अलाउड नहीं था, पिकनिक्स, गेट टुगेदर्स, कहीं पर भी मधुबाला जी नहीं जा सकती थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और आज उन्हीं की बातें चल रही हैं। सो उनके अब्बा यानी अताउल्ला खान जी बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। अगर मधुबाला जी को कुछ अलाउड था तो वो था सेट से घर और घर से सेट। इनफैक्ट वो अपनी ही फिल्मों के प्रीमियर पे नहीं जा सकती थी। कुछ किताबों ने तो ये भी लिखा है कि इन्हीं चीजों से वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हर्ट थी, और क्योंकि वो अपने अब्बा के खिलाफ नहीं जा पाती थी, वो बहुत ही मायूस और सेट पे चुप चुप रहने लगी थी। एक बार तो उन्होंने खुद कहा कि खूबसूरत होना खुशी देता है, लेकिन असली खुशी मिल जाए ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया, वापस आओ और भी बातें करेंगे उनकी।

देव आनंद और मधुबाला जी ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसा किस्सा हुआ जिसने मधुबाला जी की जिंदगी थोड़ी सी बदल दी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। देव साहब और मधुबाला जी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उसी शूट पे कुछ फॉरेन के लोग देव साहब से किसी नए प्रोजेक्ट के लिए मिलने आए। उन लोगों में काफी देर तक बातचीत चलती रही और मधुबाला जी अपनी चेयर पे बैठ करके देख रही थी। जब वो लोग वहाँ से चले गए तो वो देव साहब के पास गई और उनसे पूछा, ये लोग क्या बात कर रहे थे आपसे? अब देव साहब ने या तो जानबूझ करके या फिर वो इंटरेस्टेड नहीं थे मधुबाला जी को कुछ भी बताने में, तो उन्होंने मुस्कुरा करके कहा, तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये कह के वो वहां से चले गए, पर ये बात मधुबाला जी के दिल पे तीर की तरह लगी। घर जाते ही उन्होंने एक काम किया। What was that? अभी बताऊंगी, वापस आओ श्रेया के साथ, only on पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया और मधुबाला जी और देव साहब की फिल्म की शूटिंग के दौरान का एक किस्सा बता रही थी। इस फिल्म के सेट पे देव साहब से मिलने कुछ फॉरेन के लोग आए, वो कोई नया प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे। उनकी ये मीटिंग काफी लंबी चली। मधुबाला जी तब तक देव साहब का वेट कर रही थी और साथ में देख रही थी कि उस एक केबिन में क्या चल रहा है। जैसे ही वो लोग वहां से गए, उन्होंने देव साहब से पूछा क्या बात हो रही थी। देव साहब या तो बहुत जल्दी में थे या फिर उन्हें बताने का मन नहीं था, तो उन्होंने कह दिया तुम्हें समझ नहीं आएगा। अब ये बात मधुबाला जी को तीर की तरह लगी। उन्हें ये लगा कि क्योंकि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती इसलिए देव साहब ने उनको इंसल्ट किया। फिर क्या, अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करती थी वो हमेशा। जैसे ही ड्राइव करके घर वापस गई, उन्होंने एक फोन घुमाया। वो फोन था एक इंग्लिश ट्यूटर को। 17 साल की उम्र में उन्होंने फर्राटे से इंग्लिश लिखनी सीखी और इंग्लिश बोलनी सीखी। उन्हीं की ढेर सारी बातें श्रेया के साथ आज, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

हॉलीवुड के एक बहुत फेमस डायरेक्टर थे फ्रैंक कैप्रा। वो 3 एकेडमी अवार्ड्स फॉर बेस्ट डायरेक्टर भी जीत चुके थे। एक बार वो मुंबई आए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया को अटेंड करने। वहां पे जब उन्होंने मधुबाला जी को देखा तो उनकी खूबसूरती को देख करके वो इतने इम्प्रेस हुए कि बस वो चाहते थे किसी तरह मधुबाला हॉलीवुड आ जाए और वहां पे लॉन्च हो जाए। इसके लिए उन्होंने मधुबाला से बहुत मिन्नतें की, लेकिन भाई उनके सारे डिसीजंस तो उनके अब्बा यानी अताउल्लाह खान लेते थे। उनके अब्बा ने साफ मना कर दिया। अब वो मधुबाला को दूसरे शहर तो जाने देते नहीं थे, दूसरे देश कैसे जाने देते। सो फ्रैंक कैप्रा का ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। पुरानी जींस पर मैं हूं श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो ए भाइयों और बहनों, अरे मदन भाई छगन भाई सांभड़ो रे सांभड़ो, ओ राघो बा ओ धोंडी बा आई का ओ आई का, ओ कर्नल सिंह ओ कर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

पुरानी जीन्स में आप श्रेया के साथ जाने का टाइम, यानी वी गॉट टू हिट द हाईवे। ऑलराइट, आज का मेरा हाईवे हिट उन लोगों के लिए है जो पहली मुलाकात में तो घबराए होते ही हैं, लेकिन जब भी उनसे मिलते हैं तो वो पहली मुलाकात ही लगती है, उतनी ही रोमांटिक लगती है, उतना ही एक्साइटमेंट होता है उनसे मिलने से पहले जैसे कि पहली बार मिल रहे हो। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है तो ये गाना आज उनके लिए और ऑफ कोर्स आपके लिए। ऑन दैट नोट, दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू टुमारो। ख्याल रखो अपना। एंड या, इफ यू मिस मी, यू नो वेयर टू कैच मी, फेसबुक और इंस्टा, आरजे श्रेया विद लव इज माई हैंडल। दैट्स आरजे SHRUYA श्रेया विद लव। गुड नाइट।

0: ओवर, गो होम।
1: जेल में रहना मुश्किल है, लेकिन जेल से बाहर आकर अपनी कहानी एक्सप्लेन करना शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल।
2: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: Well, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तो रियलिटी शो लॉकअप की बात कर रही हूँ यार। आई अग्री, उसको खत्म हुए काफी टाइम हो गया, हमें विनर भी मिल गए श्रेया कालरा के रूप। जेल में रहना मुश्किल है, लेकिन जेल से बाहर आकर अपनी कहानी एक्सप्लेन करना शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल।
2: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: Well, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तो रियलिटी शो लॉकअप की बात कर रही हूँ यार। आई अग्री, उसको खत्म हुए काफी टाइम हो गया, हमें विनर भी मिल गए श्रेया कालरा के रूप।
2: बड़ी फिल्मी हूँ।
1: Well, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तो रियलिटी शो लॉकअप की बात कर रही हूँ यार। आई अग्री, उसको खत्म हुए काफी टाइम हो गया, हमें विनर भी मिल गए श्रेया कालरा के रूप। अभी बहुत

0: Mitchie, it's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.
1: खेलो मगर प्यार से
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
1: मिर्ची पे ट्यून इन हो आप एंड इट्स टाइम टू फाइंड द सेकंड मिर्ची फिल्म ची ऑफ द डे. सो द थिंग इज कि मैं आपको कॉल करके इस फिल्मी गेम की शुरुआत करती हूँ और आज हमने अतुल जी के साथ इस गेम को शुरू किया हु गॉट स्टक एट अ पॉइंट. लेकिन उसके आगे का गेम कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ है हिमांशु जी. आर यू रेडी सर?
4: यस आई एम.
1: ऑल राइट. उड़ता पंजाब में नशेड़ी आर्टिस्ट कौन है?
4: शाहिद कपूर.
1: बहुत बढ़िया. शाहिद कपूर की फिल्म जो एक ड्रिंक के नाम पे है
4: कॉकटेल टू.
1: कॉकटेल टू में मामा माशू का कौन है?
4: कृति सैनन.
1: यस इट इज. कृति सैनन सरोगेट मदर किस फिल्म में बनी है?
4: मिमी.
1: आपकी जो मोहतरमा बैठ के आपको प्रॉम्प्ट्स दे रही है आई लाइक इट. मिमी में कृति को सरोगेसी के लिए कौन बनाता है?
4: पंकज त्रिपाठी.
1: पंकज त्रिपाठी किस फिल्म में इंडियन क्रिकेट टीम के मैनेजर बने हैं?
4: 83.
1: क्या बात है. 83 में कपिल देव का रोल किसने प्ले किया है?
4: रणवीर सिंह.
1: बहुत बढ़िया. रणवीर सिंह ब्रेड पकौड़े की कसम किस फिल्म में खाते हैं?
4: शादी मुबारक.
1: शादी मुबारक उस मूवी का पहले नाम होने वाला था लेकिन बाद में उसको चेंज किया गया था. इट रिलीज विद अ डिफरेंट नेम. बहुत ही बढ़िया. एंड इतना अच्छा जो गेम आपने अकेले नहीं आपकी बेटर हाफ की मदद के साथ जो कंप्लीट किया है उसके लिए आप दोनों को ये टैग तो जरूर देना चाहूंगी.
0: मिर्ची फिल्म ची.
1: थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द गेम. आई जस्ट होप कि आगे भी इसी तरीके से हम कनेक्ट करते रहें. वेल आज के हमारे दो मिर्ची फिल्म ची हमें मिल चुके हैं लेकिन अगर आप भी इस लिस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कल इस शो पे वापस ट्यून इन करना. मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ. स्टे ट्यून्ड. इट्स हॉट.

बस तेरा चले तू ले ले पूरा दिन हो तैयार तू घंटे न गिन मैं हूँ यही एट योर सर्विस टेक योर टाइम शॉरी यू डिजर्व इट हाथ मेरा थाम लेट मी मेक यू स्माइल आई लाइक योर स्वैग यू लाइक माय स्टाइल

0: Mirchi, it's hot.
1: अरे यू के बड़ा गोरी भाई बजा